कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी

करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्बान कीर्तन गावन करते का, निमख सिमरत जित छूटै। करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्बान कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संतो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ, कोट तीर्थ मजन इशनाना। इस कल में मैल परिजै, साध संग जो हर गुण गावै। सो निर्मल कर लीजै, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र। इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरमुख जापै तिस की निर्मल होई। वाहिगुरु, एक अखर जो गुरमुख जापै तिस की निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सुध वैस उपदेश, चौवर ना को साजा। गुरमुख नाम जपै उदरै, सो कल मैं कट कट नानक माजा। गुरमुख नाम जपै उदरै, सो कल मैं कट कट।

निरंकार है, ना लय नरक ना जाइया। जियो पिंड सब दिसदा देख आख गवाइया। जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइया।

सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच त्याया उनी मंदे पैर न रखियो घर सुकृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला देवा चढ़ा सवाया वड्याई वड्या

रूप सुहावना छाड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाव दे राय पीड़ा अगे जावना नंगा दोजक चालिया तांच सह तां दिसै खड़ा डरावना कर आगन पछो तावना कर आगन।

साहिब होए दयाल, कृपा करे ता साई कार कराई सी। सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाई सी, हुक्म मनिया होवै परवान ता खसमै का मैल पाई सी। खसमै पावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाई सी।

नानक अंत ना जापनी हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार

सत सुजस तुमार, मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार। जय दियो नामा बिप सुदमा, तिनको कृपा पई है पार, कह कबीर तुम समरथ।

हल जन्म जन्म की कटिया सज्जन सचा पातशाह शिरशाह हमेशा हो शिष पास।

छूटा निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटा कर्म तर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीरथ मजन इशनाना इस कल मैं मैल परिजै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल हर लीजै सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़या मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खतड़ी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश।

माजा गुरमुख खत्री खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चो वरना को साजा गुरमुख नाम जपै उदरै सो काल में कट कट नानक माजा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

कर्णंदा मुकुंदे नहीं छूटी निहल पई सब सेवा बार पार घर मूस बिरानो पेट भरे अपराधी जे परलोक जाय अपीरत सोई अभिद्यास

बिके विकार दुष्ट भव तज निंद पराई काम क्रोध चंडार महल में बैठे अगम पार भीतर अमृत भई सोई ज पल जन पावे सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतने पाचार रहाओ दुख सुख दो समकर जन बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हरि भाई है संसंगत सत संगत गुर प्यार एन सलाह हर नाम प्राप्त गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे

रहाउ क संसार किए रस भोग ता तन उठ कलोय रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद न भोले दारू लाए कंचंदन का फल चंदन वास मानस का फल कट मै सास सास गे काया फल काया टल टल पाए ताके पाचे कोय न खा।

सेवा करी तुम्हारी, एक निदान दे तू अपना एनस ना बखानी। कहत नानक गुर प्रसादी बूझो, कोई ऐसा करे विचार, ज्यों जल उपर फेन बुद्ध बुद्धा तैसा ए संसार, जिस ते हुआ तिसे समाना।

तन मन तंद्राता गुर की बाणी सेवा सुरत समय अंतर वसयाल का भेवा गुरमुख होए लखाई नानक जिस पावे तिस दापे देवे पावे तिवे चलाई मलार महला तीजा दुतके सतगुर ते पावे घर दर महल सुतान गुर शब्दी चूकै विमान जिन को लाल लिखिया तुर नाम अंतिम नाम सदा सदा ध्यावै साची दर गय पावे मान रहा मन की बिद सतगुर ते जाने अनदिन लागे सद हर सो ध्यान गुर शब्द रते सदा बै लागी हर दर गय साची पावै मान ई मन खेले हुकुम का बादा इखिन मह दह दिस फिर आवै जा आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इह मन गुरमुख तत्काल वसे आवे इस मन की विद मन हू जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते आए तू ते नानक नाम ते आए सदा तू भाव सागर जित पावै पार मलार महला तीजा जीव पिंड प्राण सब तिसके घट कर रया समाई एक बिन मैं अवरना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहोन ले बुलाई आदिष्ट अगोचर परंपर करता गुर कै शब्द हारे ध्याई रहा मन तन भिजे क्लिव लागे सहजे रह समाई गुर प्रसादी भ्रम पो भागे एक नाम लिव लाई गुर बचनी सच कार कमावे कथम तद ही तब ही पाई कूड़ मिदे किसे बुझाए तिन राम नाम लिव लाए जय जय देखा तै कोई न सोय तै तै देखा तै को सोई गुरमत बुध पाई मन तन प्राण धरी तिसे आगे।

सतगुरु सेवा आप गुआए हूँ तिन जन के सत लागो पाए हूँ जीवा सद हर के गुण गाए गुर का शब्द महारस मीठा हर के नाम मुकुत गद पाए रहा।

माने सब को है गुरबचन मन सी तलोए चौह जुग शोभा निर्मल जन सोए नानक गुरमुख विरला कोय राग मलार महला चौथा कर पहला चौपद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद अन दिन हर हर त्यायो हृदय गुरमत मत गुरमत दुख विसा

हर बोलो गुरु के सिख मेरे भाई, गुरु पौधर जगत राव रहा। जो गुरु को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभावे, हर की सेवा सदगुरु।

ब्रह्म बिंदे सो सतगुरु कहियै हर हर कथा सुनावै दिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बो विद सत कर मुख संचो तिस पुन की फिर कुतोट न आवै सतगुरु देव परतख हर मूर्त सो अमृत वचन सुनावै नानक भागले तिस भाग भले तिस जनकै जो हर चरण जित लावै मलार महला चौथा जिनके हीरे बस्यो मेरा सतगुरु तै संत भले पल बात तिन दिखे मेरा मन भिक्ष हो तिनके सदबल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिन की तृष्णा भुग सवलात उतरी जुरमत राम रस कांत रहा हर के दास साध सका जाने जिन मिलया लह जाए भ्रांत ज्यों जल दुध भिन्न भिन्न कढ चुन हंसला त्यों दो देही ते चुनो काढे साधु हुमे तात जिनके प्रीत नाई हर हृदय ते कपटी नर नित कपट को मात तिनको क्या कोई देख वाले वाह बीजा पे ही घात हर का चहन सोई हर जन का हर कापे जल में राप रखांत तन तन गुरु नानक समदर से जिन निंदा उस्त कई तरी तरांत मालार महला चौथा अगम गोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जब लया सत्संगत साध पाई वड़ भागी संग साधु पार पया मेरे मन अणदिन अणद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पो गया रहा जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो कर मया तिन का दर्श देख सुख पाया दुखों में रोग गया जो अनदिन हृदय नाम ते आवै सब जन्म तिन्हां का

ओट गुरपुरै तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक अंतरंगी लह पाया, फिर दुख न लागे आए मलार। महला पंजवा। खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रह न जाए, सार संभाल माता मुख नीरै, तब तृप्त अघाय। हम बारक पिता प्रभुदाता, भूलै बार कणक लख बरिया, आन आन ठौर नहीं जाता। राव चंचल मत बारक बपरे की, सर्व अणकर मेल, माता पिता कंठ लाए राखे, अण दिसाए तब खेल। जिसका पिता तू है मेरा स्वामी, तिस बारक भू कैसे, नाम निद नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसे। पिता कृपाल आगे दीनी, बारक मुख मंगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभु मा चाहे, मोह हृदय बसे निचरण। मलार महला पंजवा। सगल विदिक जुर आहर करेया, तजो सगल संदेशा, कार सगल अलंब उकार का, ठाकुर का पर।

चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संजना पै करो बेनती मन दर्शन की प्यासा विचरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दे दर्शन दी जय नाम धार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम सो बने आई राजा राम रंग सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहा एक तिल बिसरत नहीं सुख सागरे नाम नवे निध पाई दोत पयो पूर्ण भावी को भेटे संत सहाय सुख उपजय दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिव लाई तिर संसार कठन कह पै सागरे हर नानक चरण त्याई मलार महला पंजवा कण हर बस सगल जग छाया भय कृपाल प्रीतम परम मेर है अनंत मंगल सुख पाए रहा मिटे क्लेश दर्शन सब जी पार ब्रह्म मन ते आया सा संजन मर निवारे बहुर नकत मूं ताया मन तन अनाम तर निरंजन रातो चरण कमल लाया अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास सरनाया मलार महला पंजवा बिचरते क्यों जीवे ओ जीव जीवन चित है उलास आसमल बेकी चरण कमल रस पीवन दहा जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाहि मन तन राव रे जगदीश रे पेकत साधु सदा हजूर नानक राव रे सब अंतर सर्व रया भरपूर है मलार महला पंजवा हर के भजन कौन कौन न तार खग तन मीन तन मृग तन बारह तन साधु संगु धार रहा देव कुल दैत कुल जक निर नर सगर सगर ओ सागर उतरे पार जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख विदारे काम क्रोध मां बिकया रस इन ते भय निदारे दीन दयाल जपै करुणा मै नानक सद बलहारे

जाओ न जम के घाट रहाओ। धारण गुरु बार राखे भ्रम के खुले कपाट, बेशुमार शाह प्रभु सभाया लाहा चरण दुखाट। शरण गही अचुत बनासी कलवे काढ़े हैं छाट, कल कलेश मिटे दास नानक बहुर न जूनी माटी। मलारी महला पंजवा बहुज माया मोह हिरानो, कोड़ मदे को विरला सेवक पूर्ण भगत जिरान रहाओ। इत उत डोल डोल संपायो, तन धन बिरानो, लोभ जराए चराए करत बिरह गए, ठगियाई हो तो संग न जानो। मिर्ग पंखी मीन दीन ही नीचे, कुट संकट फिर आनो, कहु नानक पाहुन प्रभु तारो, सत्संग सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मुए बिख खाई री माई, जिसके जीत नहीं रख लीने, मेरे प्रभु को कृपाई रहाओ। अंतर जामे समय वरत, तापो कैसा भाई, साध संग सहाई छोड़ न जाई, प्रभु दिसे सबनी जाई। अनाथा नादिक मुख भंजन, आप लिए लड़लाई, का हर की ओट जीवे दास तेरे, नानक प्रभु शरण आई। मलार महला पंजवा मन मेरे, हर के चरण रवि जय, दर्श प्यास मेरो मन मोहयो, हर पंख लगाए मलिज रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पाए, ओ साधु सेव करी जय, धारण गुरु स्वामी मेरे, राम हर सभी जय। त्राहे त्राहे कर सरणी आए, जल तो कृपा की जय, कर गैले उस्तास अपने को, नानक अपनों की जय। मलारी महला पंजवा प्रभु को भगत बचल बिरदायो, नंद कुमार चरण तल दीन, अपनों जस वरतायो रहाओ।

ताकि कीमत कही न जाए। कर किरपा पूर्ण सुखदाते, तुमरी किरपा ते तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंगरा ते रहाव। गावन सुनन सब तेरा भाणा, हुकम जे सो सस माणा। जब जब जीवै तेरा ना हो, तिजबिन दूजा ना ही ठाव। दुख करत हुक्म रजाए, भाणे बख्श भाणे दे।

0: Bonjour.
1: Varsa sarısı ağya o he ağna sarı ağır hav santusun yeman
0: सुहाग कनक और प्रीत और चात्रक और ऐसोहर संगे मन मोह त्याग माया तो हु मिल संत नानक ठाकिया मल्हार मल्ला पंजमा गुण कपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तजगमान मन साधुआ कै संग हर सिमरेक रंग मिटै जाहे दुख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिन सगै विखी जंजाल साजना के चरण लाग नानक गावे गोबिंद नीत मलार मला पंजवा कान कर चित गोबिंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण सरन तन सागर तन अन तरस बैन मत प्यास जिसरो आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जान जन नान कर कृपा प्रभ देन मलार महला पंजवा हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल रहाओ प्राणनाथ अना सके दीन दर्द नवार हे समर्थ अगम पूर्ण मोमया मोहि मया तारंद कु महाप्यान नानक पार उतार महल मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद चकवी नैन नींद नहीं चाहे बिन पिर नींद न पाई सूरच रहे प्रियो नेखे नैनी निव निव लागे बाई पिर भावे प्रेम सखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा सी प्यास तुसाई रहाओ सरवर कमल करन आकाशी बिकसे सह सुबाई प्रीतम प्रीत बनी सब ऐसी प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मलाई चात्रक जल बिन प्रिय प्रियो टेरे बिलप करे बिललाई कन हर कौर दसो दिस बरस बिन जल प्यास न जाई बिन मीन नवास उपजे जल ही तय सुख दुख पूर्व कमाई खिन पल रह न सके पन पल जल बिन मरण जीवन तताई तन वाडी प्रदेश निवासी सच्चा गुर पै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय निवासी भगत रति हरखाई प्रियो प्रियो करे सबे है जेती गुर भावे प्रियो भाई पाई प्रियो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मैं जियो जियो ऐसोई घट घट रहा समाई गुर प्रसाद करी प्रगा सह सहजे सह समाई अपना कारज सवारू आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद करी पीर पाया तो नानक तप्त बुझाई मलार मल्ला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को ना ही जतन कर रहे न पावे आच काच डर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ जय जगदीश प्रभु रखवार राखै परखै सोई जेती है तेती तुझ ही तै तुम सरे वरना कोई जी उपाय जुक्त वस कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्व सिर मोरा काल बिकाल परम पै खंजन कागद कोट ए जग है बपरो रंगन चिन्ह चतराई नानी से बूंद पवन पत खोवै जन्म मरै खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपुण कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपुण रसे दूजा मन माही गरोड़ गुर ज्ञान ने ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन देव पवे सच पाया हर की भगत नरारी जेती है तेती तुझ जाचै तू सर्व जिया दयाला उमरी सरन परे पत रखो सच मिले गोपाला बादी तंद अंध नी सूजै बद कर्म कमावै सत गुर मिले तूज सबूजस सच मन ज्ञान समावै निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु दिखावै बिन साची जग सुपना मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई रैन बवीहा बोलियो मेरी माई रहाओ प्रिय सो प्रीत न उल्टै कब हूं जो तै पावै साई नींद गई हो मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सबाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाए प्रे बिन सिगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सोहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह न सकू बिन मिलै नींद ना पाई तेरे नजीक ना बूझे बापड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई काओ नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कह ना जाई मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अखली ऊंडी जल परणाल ढूगर ऊंचो गुड़ खड़पाताल सागर सीतर गुरु सब दि विचार मार मुक्ता हमें मार मैं अंदले नामे की जोत नाम धार चला गुर के पै पैते रहाउ सतगुरु शब्दी पादर जान गुर कै तकिए साचे तान नाम समाल सरूड़ी बान थै भावे दर लह सुपरान ऊडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूगर ना उची तार निज कर वासा ते मगन चालन हार जित कर वसै तुहें बिद जाने बीजो महल न जापै सतगुरु बाजू समझ न होवी सब जग तबिया छापे करन पुलाव करे बिल लातू बिन गुर नाम न जापे पल पंकज मैं नाम छड़ाए जे गुर शब्द संजापे एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय विसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तर सुहावी कट कट जूत समाणी कालर बीज सतुरमत ऐसे निगुरे की निशानी सतगुर बाजो घोर अंधारा डूम मोहे बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मिटना न जाए हुक्मे बादा कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए चौदह सुख मैं वरते प्रभ तेरा चौदस नाम पतालंग सब मैं शब्द वरते प्रभ साजा कर्म मिले बेयालंग जामन मरना तिसे सिर उब खुदिया निद्रा कालिंग नानक नाम मिले मन पावे साची नदर नरसालिंग महल मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार न जाने कंठे बैठे गुरु शब्द पछाने तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख न जाचे हृदय संभाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी चल माही सर्ब जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत भारी उड़ न साके पंख पसारी रस चुगै मन मुख गवार गुरमत फाथी छूटै गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटै जमकाल हिरदे साचा शब्द समाल गुरमत साची शब्द है सार हर का नाम रखे उरतार से दुख आगे जे भोग बिलासै नानक मुक्त नहीं बिन नावे साचे मलार महला तीजा अष्टपदियां कर पहला ओंकार सतगुर प्रसाद कर्म होवे ता सतगुर पाईए बिन कर्मा पाया ना जाए सतगुर मलिया कंचन होइए जा हर की होए रजाए मन मेरे हर हर नाम चित लाए सतगुर ते हर पाईए साचा हर सिओं रहे समाए रहाओ सतगुर ते ज्ञान उपजे ताए संसा जाए सतगुर ते हर बूझिए कर बजूनी न पाए गुर प्रसादी जीवत मरै मर जीवै शब्द कमाहे मुक्त द्वारा सो जी पाए जे विचों आप गवाए गुर प्रसादी सिव कर जमै विचों सख्त गवाए अचर चरे विवेक बुद्ध पाए पुरखै पुरख मिलाए तातुरबा जी संसार अचेत है चलै मूल गवाए लाहा हर सतसंगत पाईऐ करमी पल्ले पाए सतगुर बिन कने ना पाया मन वेखो हृदय विचार बड़पागी गुरु पाया।

नानक एह जगत सब जल है, जल ही ते सब कोए, गुर प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा विप्रवाह इका तू तनी, सत सब किश आपे आप, दूजा किसे गनी, मानस कूड़ा गर्भ सच्चा तुदमनी, आवा गुण चाहे पाई मेदनी, सतगुर सेवे अपना आया तिसगनी, जे होमे विचों जायता केहा गंतगनी, मनमुख भुगवार जो भुला मंजमणी, कट्टे पाव संक नावे कनी। श्लोक महला तीजा, बबीहा खसम का महल न जानाई, मैल देख अरदास पाए अपना भाणे, अपने भाणे बहुता बोले, बोलिया ताए न पाए, खसम वड्डा दा तार है जो इसे सुफल पाए। बबीहा क्या बपड़ा जगते की तिख जाए, महला तीजा बबीहा भिन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए, ए जल मेरा जीव है जल बिन रह न जाए, गुरफब्दी जल पाई है विचों आप गवाए, नानक जिस बिन चसाना जीव दी सो सतगुर दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख में गणत न होई, तू करता गोविंद तुत सिरजी तुत गोई, 184 मेदनी तुझी ते होई, एक राजे खान मलूक रह कहावे कोई, एक साह सदावे सच धन दूजे पत कोई, एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, विणनावे बाजारिया पिहावल होई, कुंड खुट्टे नानका सच करे सोई। फोक महला तीजा, बबीहा गुणवंती महल पाया, अवगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै, गुरमुख सदा हजूर कूप कारण होवे, नदरी नदर हाल, नानक ना वृत्ते सहजे, मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा, बबीहा बिनती करै हर कर कृपा देहो दी जान, जल बिन प्यास न उतरै छुटक जाहे मेरे प्राण, तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निदान, नान गुरमुख बख्श लै अंत बेली हुई भगवान, पौड़ी आपे जग तो पाए के गुण अवगुण करी विचार, त्रै गुण सर्व निराल है नाम न तरे प्यार, गुण छोड़ औगुण कमाम दे दरगाह हुए खवार, ज्यो जन्म निहारिया किताई संसार, सच्चे शब्द मन मारिया उन सुनाम प्यार, जिनी पुरखी उतारिया सच्चा लख पा, तू गुणदाता हां तू गुणदाता निदान है सी अवगुण यार, जिस बख्शे सो पाई सी गुरु शब्दी विचार। श्लोक

राग बाणी राग मलार बाणी भक्त नामदेव जियो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन भक्त दान दीजे जाचे संत जन रहाओ जाचे घर दिग दिसे सराइचा बेकुंठ भवन चित्रसाला सपत लोक समान पुरी अले जाचे कर लक्ष्मी कुआरी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपुड़ा कोटवाल सोस करा श्री सो ऐसा राजा श्री नरहरी जाचे कर कुलाल ब्रह्मा चतुर मुख डावड़ा जिन विश्व संसार राची अले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखी अले पाखीले पापुन जाचे डंगिया दुदार चित्र गुप्त लेखिया धर्म राय पर धर्म राय परुली प्रतिहार सो ऐसा राजा श्री गोपाल जाचे कर गणप गदर्भ रिखी बापुड़े टाटिया गवंत आछ सर्व शास्त्र बहुरूपिया अनगरुआ अखाड़ा मंडलीक बोल बोले काछ चौर ढुल जाचे है पवन चेरी सकत जीत लै पवन अंड टूक जाचे पसमती सो ऐसा राजा त्रिपवन पति जाचे कूर कूर्मा पाल ससर फनी वासुक सेज वल्लुआ अठारह पार बनास्पति मालनी शनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नक अरसेव जाचे सुरसरी सपत समुद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन तनी जाचे घर निकटवर्ती अर्जुन त्रुप प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जाचे है करी सर्व्यापक अंतर हरी प्रणवे नाम देव ताचियान तगल भक्त जाचे निशान मलार मुक तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया रहाओ आलावंती ए ब्रह्म जो है मुझ ऊपर सब को पीला सूद सूद कर मार उठारियो सूद सूद कर मार उठायो कहां करो बाप बीठला मोए होए जो मुक्त दे होगे मुक्त न जाने कोयला ए पंडिया मुको टेढ़ कहत तेरी पैज पछोड़ी होएला तू जो दयाल कृपाल कहियत है अतबुझ पयो अपारला फेर दिया देहुर नामा क्यों पंडियन को पिछवारला मलार बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नागर जना मेरी जात विख्यांत चिमारंग हृदय राम गोबिंद गुणसारंग रहाउर सुर श्री सलल कृत बारुणी रे संत जन करत नहीं पानग सुरा पवित्र नत अवर जल रे सुर श्री मिलत नह होए आनंग तरतार पवित्र करमानिये रे जैसे कागरा करत विचारंग भगत भगौत लिखिया ते उपरे पूजिए कर नमस्कारंग मेरी जात कूट पाडुला टोटवंता नितै बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान तेह करे डंडाओ तेरे नाम सरनाए रविदास दासा मलार हर जपत त्यो जना पदम कवलास पत तास तम तुल नहीं आन को एक ही अनेक होए बिस्थर्यो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जाके भागवंत लेखिए अवर निपेखिए तास की जात अशोभ छिपा ब्यास मह लेखिए सनक मह पेखिए नाम की नामना सप्तदीपा जाके ईद बकरीद कुल गौ रे बुद्ध करे मानिए सेख शहीद पीरा जाके बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तेहुरे लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कटंब ढेर सब टूटवंत फिर अजो बिनारसी आस पासा आचार सहित विपर करे डंडौत तिन तने रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मिलत प्यारु प्राण नाथ कवन भगत ते सास संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लै धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटे हो झूठे बणज उठ गई
ਉੱਠ ਹੀ ਗਈ ਹਾਟਿਓ ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ।

बुझज सा बुझाए सी सतगुर का बहु सौला गुण सब गाव गुण गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गुण गाव दुगुणी समौला श्लोक महला चौथा सुत्यार प्रवचेत मान हार सह समाध समाय जन नान खरा हर चाऊ मानू गुर तुठा मिले माए महला चौथा हर एक स्थिति पर हरी हरि को मेरा चैतु जन नानक को आधार हर प्राप एक स्थिति गात पात पौड़ी पंच शब्द बजे मत गुरमत उठभागी अनद बजे अनद मूल राम शब्द देखिया गुरु शब्दी गोविंद गजिया जुगाद वि सारे को मत गुरमत हर प्रभु भजया हर देव दान दयाल प्रभु जन लाख हर प्रभु लज्जिया सब धन कहो हो गुर सतगुरु गोर सतगुरु जित मल हर पढ़दा खजिया श्लोक महला चौथा भग सरोवर उछले सो पर परे वाहन जिन्ना सतगुरु मनिया जन नानका वड पा गुलान महला चौथा हर हर नाम सांख हर हर के गुण आ कथन न जाए हर हर अगम गाद हर जान कैत बैद मिलह मिलाय हर हर जास जापत जपान तु जान एक तैल निकीमत पाई जन नानक हर अगम प्रभु हर मेल लहो लाडू लाए पौड़ी हर अगम गोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा कश वखर होए सो वरणीय स्वरूप नाऊ लिखा जिस बुझाया बुझाई दे सोई जान लिखा सतसंगत सतगुर चरसा लय जित हार गुण सिखा तन तन सुरस न धान कर धन सुपादा सतगुरु जित मेल हार लिखा लिखा श्लोक माला चौतार हर नाम अमृत है हर जपिय सतगुर भाय हर हर नाम वैत है हर जापत सुन दुख जाय हर नाम थनि अराध्या जन मस्तक लिखा तोहर पाय हर दर गय जन पै नाई अन जन हर मन वसिया वाय मऊ जन नानक ते मुख उजली जिन हारु सुनिया मन भाई महल जोतार हर नाम निधान है गुरु पाया जाय जिन तोर मस्तक लिखिया तन सतगुरु मिलिया जाय तन मन शीतल होया शांत वसी मान आए नानक हर हर चाहते आओ सब दाल दुख लै जाय पौड़ी हों वारिया तन कहो सदा सदा जिना मेरा सतगुर जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तन को मिलिया मेरा सतगुरु जिन तो कहो तोर मस्तक लिखिया हर अगम त्याय गुरमति स्वरूप नहीं प्रभु रेखिया गुरु बचन त्याया जिना आगम हरते ठाकुर शिवराल एक या सब कहो मुख हो नर नर हरि नर नर हरि नर नर हरि हर लार भगत सिखिया श्लोक माला चौथा राम नाम राम राव रहे राम राम ना राम रमीत सब घट घट घट घट आत्म राम है प्रभ खेल की ओ राम गुरीत हर निकट वसजग जीवना प्रकाश की ओ गुरमीत हर स्वामी हर प्रभु तैन मिले जन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम त्याया गुरु बचन जप्यो मन चीत महला चौथा हर प्रभु सज्जन लोड़ लहो भाग वस बढ़ भाग गुरपुरै देखाले या नान खर लिबलाग पौड़ी धन धन स्वामी सफल काढ़ी जैत हर सेवा मन पाणी हर कथा सुनाओ मेरे गुर सिखो मेरे हर प्रभु अगत कहानी क्यों पाई है क्यों देखिए मेरा हर प्रभु सुगुर सुजानी हर मेल दिखाए आप हार गुर बचनी नाम समाणी तेन बेटो नानक वारिया जो जपदे हर निर्बाण श्लोक महला चौथा हर प्रभु रत्ते लोहे ना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभु सज्जन पाय जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतरु शांत है मंदर नाम समाए नाम चतवै नाम पढ़े नाम रह लिवलाए नाम पदार्थ पाईए चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम उपजय तृष्णा भोक्षा बजाय नानक नाम रत्या नाम पल पाए पौड़ी तदापे जगत पाए कैद दापे वासगत कीता एक मन मुख कार हाराय नऊ एक नाम हेल गुरु तनाम जीता रुतमार प्रभु नाम है गुरबचन सुभाग लीता दुख दाल दु सबू लय गया जन नाम गुरु हार रीता सब शिव मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जैन जग तो पाय सब वस कीता शोक माला चौथा मंत्र अमरु गाय ब्रह्म भूले मन मुखो दुर्जना नार गुरु गवाए मन सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मंत्र नाम संगार बाहु जाऊ दिखार नर नानक सो प्रभ मैं मिले हों जीवा साधु सुने पौड़ी जगन्नाथ जुगदी सरकार ते अपरंपर प्रखत ओल हर नाम दयाओ मेरे गुर सिखो हर उत्तम हर नाम बोल जिन ते आया हृदय जन सराहा तू ते मिले नहीं हार रूल वडभागी संगत मिले गुर सतगुरु पूरा बोल सब त्यावो नार नारायण नारायण जित चुका जम चागड़ चगोल श्लोक माला चौथा हर जन हर हर चौंदे आओ सर संध्या गा बारू नानक हर जन हर लेव उबरे जिन संध्या तेसो फेर मारू माला चौथा की प्रेम कसाईया हर हर नाम पखानन जिकर दूजा देख दे जन नानक काडू दे चन पौड़ी जल तल मही अल पौरण अपरंपर सोई जी जन प्रत फाल जो करे सोई मात पिता सुत प्रीतमा प्रात मीत तस्बे नहीं कोई खट खट अंतर राव रही आ जप्यो जानू कोई सगल जप हो गोपाल गुण प्रगट साहब लोई श्लोक माला चौथा
ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੱਜਣਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਗਊ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿ ਤੂੰ ਲੋਡ ਲੋ ਡਗ ਦਰ ਗਹਿ ਮਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਤੂੰ।

हरूर धारियो गुण गुआ कुट कुट पे दोख सब सन कह हर दूर की एक बलफा तुमरे जन तुम ही ते अजाने प्रभ जाने जन ते मन खुआ हर हर आप धरियो हर जन कह जन मै जन नानक हर पर एक प्रभाती महला चौथा गुरु सतगुरु नाम दृढ़ायो हर हर हम किए जीवे हम मुए जीवे हर जपवा धन धन गुरु गुरु सतगुरु पूरा बिकु डुबदे बांधे कटवा जब मन राम नाम आरंद वा उपजम पोवा नवाए कदम गुरु पूरे हर प्रभ लभ हर हाओ राम नाम रस राम साहिब रस बिया गुरमुख रस वा लो मनूर कंचन मन संगत है हर गुरु धारियो गुरु हर पवा हों में बिख्या नीलो लुभाने पुत कृत मोल पवा तीन पग संतन से कबो तै मन मुख घूमर प्रभा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जान तुम है परे हार तुम शरण बा जो जन तो राखो स्वामी जन नानक दास तुन बा छक्का पहल प्रभाती वास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जब मन हर हर नाम निधान गुह हर दर गए पावे मान जिन जपे ते हर पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम हर ते कर ध्यान सुन मन हर कीर्त शरण जान सुन मन गुरमुख पावे मान जब मन परमेश्वर प्रधान किनको पाप पठान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवां पास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तद कर ज्योत निवाजिया सहजा तरत वर्तन को बाणी निहुन विसारो सेवो सारंग पाणी मन सतगुरु सेव हो परम गत हर सोग ते रह निरार ता तू पावे प्राण पे रहाओ कापट भोगरा सन को जाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए रिजक समाए जल तल मीत सो हर सेवो नीता नीत ता सह जय कोय न रहो है कुट परा दुख में तो है दात करे नी बचो दावे एक एक बख्श फिर बहर न बुलावे कीर्त संजोगी पाया पाले सत्संग ने बसक पाले गुरु लै तुमरे द्वार जन नानक दर्शन दे मुरार प्रभाती महला पंजवा प्रभु की सेवा जन की सुबह नाम काम कोत मिटे दे लोभ ला नाम तरा जन की भंडारे गुण गाय प्रभु दर्श प्यार तुमरी गात में तुम प्रभु तुम जनाई काट जे वरी जन ले छड़ाई रहाओ जो जन राता प्रभु के रंग तिन सुबह प्रभु के संग जिस रस आया सोए जाने पे कौन मन मै नाने सो सुख्या सब त्यो तुम सोए जा कीर देव स्यासा प्रभु सोए सोई ने चलिया बिना जाए अंदर प्रभु के हर गुण गाए ता को करो सगुण सुकार जाके मन पर निंकार कर कृपा मोह था ठाकुर सेवा दीवा नानक कुदरे जन की सेवा प्रभाती महला गुण पंजवा गुण गाल मन पै सुमरो भगवान तै जा के सुमरण करमल जाए तिस गुर की हम जरणी बाए समात देव संत प्यारे सिमरो दिन मोहर सिमरो नाम मोह निस्तार राव दिन के गुरु के अमार सीधा सगल त्याग नाम हर गीता तिस गुर के सदा बल जाइए हर सिमर गुर ते पाई जिस गुर ते पाई उड़द बाणी जिन गुर सोतराया जिस प्रसाद मोह नाई नि सपाए जिस प्रसाद मोह नि माए हल पल जिन जोगरे सवारिया तिस गुरु प्रसाद नमस्कार महा मुगत गया गया नी गुरुपुरे की कथ कहा नी पार नाम गुरुदेव बड़े भाई हर से प्रभाती मल सगले मोह दुख मिटे दुख सुख दिए आप नाम जपाए कर कृपा अपना अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाए हम बारिक शरण प्रभु दयाल अवगुण काट के प्रभु अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहा ता पाप से गुण भीतर हय कृपाल गुसाई सात सात पाल मुरादी अपनोए सतगुरु के बल जाए अहू गोचर व्या स्वामी दा कांदना पाई लाह कट हुए तनवंता अपना प्रभु दे आई आठ पैर परम दे आई सता सदा गुण गाई कौ नानक मेरे पूरे मनोवर्थ है बापू गुरु पाए प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम कलयुग सवनास है सतनाम गुरु दी नीरास है प्रभु की दृपा सुभावंत है सुख सुख सदा सुहंत हर हर नाम जुमर भाई सगले रोग दोख सब विनसै अज्ञान देहरा मन ते जाई रहा जन्म मरण गुरु अखे मीत हर के नाम से लागी प्रीत कोट जन्म के गए क्लेश जुद भाव सो बलहास तिस गुर को हों सत बल जाई जिस पर साधन नाम ते आई सदा रोग ते पाई उड़ भागी जिस मिलते राम ले लागी कर कृपा परम स्वामी सगल टाके अंतर जामी आठ पैर ते अपने लाए
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਹਾਤੀ ਮੱਲ ਪੰਜਾ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਲਕਾ ਆਨੰਦ ਪੁਣ ਗੋਦੀਏ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਭੈਣ ਸੁਤਰੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾ ਗਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਪਲ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਆਗ੍ਰਹ ਮਨ ਤਣ ਵਸਿਆ ਹਰ ਹਰ ਭਵ ਸੋਈ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਨਾਵਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੇ ਸੰਗ ਤਿਲ ਮੈਲ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗੀ ਚਰਨ ਕਰੁਣ ਸੋ ਲਾਗੀ ਫਰੀ ਪਿਆ ਲਾਗੋ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਕਾਮ ਕੁਲੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਮਿਲਣ ਕਾ ਮਾਰਗ ਜਾਨਾ ਭਾਇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੂ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨ ਸਜਨ ਸੰਵੀਤ ਪਿਆ ਸੋਏ ਲੈ ਨਾਮ ਤੁਨ ਹਰ ਸਕੈ ਤੋਲੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਕੋਹ ਨਾਨਕੁਲ ਭਾਗੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੇ ਧੁਨ ਸਹੀ ਸਾ ਸਾਹ ਗੁਰ ਵੀ ਦਰਗੇ ਨਾਮ ਸਾਹ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਮਨਮੀਤ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਉੜਭਾਗੀ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਨਿਤਰਾ ਪਾਏ ਲਾ ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਜੀ ਵਧਾਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਗੁੰਗਾਏ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਲੰਗ ਮਾਨ ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕੁਦੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕੁਦਰਸ ਪਾਉ ਤ੍ਰੈ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਦਿਰਟਲਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸਮਨ ਵਸੈ ਦੁਰਦਮ ਸਭ ਤਾਂ ਕਾ ਨਸੈ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰਾਮ ਗੁੰਗਾਵੈ ਮੁਕਤੇ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾ ਮੁਕਤੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾ ਵਿਰਹਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ਭਾਉ ਕਰਾਮ ਬਿਨਸ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਤਣੀ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਗੁਰੂ ਸਰਣਾ ਨਿਰਭੈ ਸਾਧ ਪਰੇ ਹਰ ਸਰਣਾ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਰਸ ਸੁਖ ਨੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਖ ਨਾਇਆ ਵਨੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਖੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪੰਜਵਕ ਲੋਕ ਸਵਲਾ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸਿੱਖ ਪੈ ਸੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਲੈ ਮਿਲੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫਾਹਾ ਕਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੜਦਾ ਟਾਕਿਆ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਏ ਸਿੱਖ ਪਏ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਲੈ ਮੇਲੇ

जतनम साधक महिमा वर्णा कौन परानी नानक साधक शोभा ब्रह्मा समानी साधक संग गुचर मिलाए साधक संग सदा पर फुलाए साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कथू दावाए साध संग अस्त मन पावाए साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत साध संग के सुनी बैर साधक संग न बींगा पैर साधक संग न ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हों ताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हों तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग वास्ता गोचर लै साधु के संग हजार सहै साधक संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग महल पहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कोल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सोतन पावै जिस धनते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लाइन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग श्राव थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कश काल दर्शन भेट होत निहाल साधक संग लोकत हरय साधक संग नरक पर हरय साधक संग यहाँ वहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मिला जो इच्छे सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पारम साधरद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनु हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ साधक संग न मनते बिसराय साध संग सर पर निस्तराय साधक संग लगै भ्रम मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संजोग साधक महिमा वेद

इसकी आस न व्यर्थी जाए। सेवको सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाए। इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसे निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजा गुरु कै पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सहेले नानक हर प्रभापे मेले। सा संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद। राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ परम तरन का यू सो आओ। आठ पहर प्रभु वेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पाव। अलत पलत दोए लेहु सवार राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे तिस साज प्रिखिया। मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पो जाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह के तुम्हारी। एक काटे कर रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे। इससे दूर कहा को जाए उबरे राखन हार ते आए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। इंता जाए मिटे हंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा नानक तां कै कारज पूरा। मत पूरी अमर जा की दृष्टा दर्शन पेक उदर सृष्टा। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोहोत निहाल ताके निकना आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंत प्रभु जीठा ना प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दिष्टाए। नौ निद अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तैनाद कह न जाई अचरज विस्माद। इन देखिया जिस आप दिखाए नानक जन सो जी पाए। तो अंतर सो बाहर अनंत घड़घड़ व्याप रहा भगवंत। धरन माहे आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल। पंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कवन कर्म। पौन पानी बसंतर माहे चार कुंड दैद से समाहे। इसते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमरत मैं देख ससिय सूर नखत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कबहू डोले। सर्व करा कल खेले खेल मोल ना पाइये गुणे मूल। सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे स्वामी उत्पोत। गुरु प्रसाद ब्रह्म का नास नानक तिन मेह विसास। संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुनो सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचर। जिन जाता तस्की रैत सत बचन साधु सब कहत। जो जो हो सोई सुख मान करण काम हर प्रभ जान। अंतर बसे बार पी उही नाग दर्शन दिख सब ओहि। आप सत किया सब सत तिस प्राप्त सकली उत्पात। इस भावे तक करे विस्तार तिस भावे तंकार अनकला लखी न जाए। जिस पा जिस ले मिलाए कावन नक्त कवन कहिए दूर। आपे आप भरपूर अंतर गज साब जनाए नाग तिन जना बुझाए। सर भूत आवरतारा सर्व ने ना पिख नहारा। सगल समग्री जाका तना अपन जा सा पी सुना। आवन जान खेल बनाया आग्ञा कारी कीनी माया। सबके मद अल्पतो रह जो किश कहना सो आपे कहे। अग आया आवे अग आ जाए नानक जा पावे तां लै समाए। इसते होए सो नाई बुरा उरे कहो किने कश करा। आप लाकर तू तत नीकी आपे जाने अपनी जी की। आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच। ताकी गत मित कही ना जाए दूसर होए तां सो जी पाए। इसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान। जो जाने तिसरा सुख होए आ मिलाए ले प्रभ सोए। ओ तनवंत कलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सु आओ जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन का।

हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम ओट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मान

उन्हें छड़िया माया सुहावड़ा तान संत्या नाम पार जिनको पूरब लिखया तिन रंग लगा करमी सत।